0: आग से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: ओ सानू मंजला ना प्यार मेरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

0: से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

0: थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: The voice for your community, the voice of the city, CJMR 1320.

पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।

तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

0: ये सुन रहे हैं। ये है CJMR 1320 शहर की आवाज। अब आप शहर की आवाज CJMR 1320 रेडियो सुन रहे हैं। विविधता और संस्कृति की दुनिया की खोज करें और देखें कि एक समृद्ध प्रसारण इतिहास कैसा दिखता है। जिन समुदायों को हम सेवा प्रदान करते हैं उनसे लेकर हमारे द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों तक CJMR 1320 वेबसाइट पे सब कुछ है। आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं और देखें कि हम CJMR 1320 पर शहर की आवाज क्यों हैं। ऑन एयर, ऑनलाइन और अब फोन ऐप पर अधिकारित CJMR 1320 ऐप से अपना पसंदीदा स्टेशन सुन सकते हैं, साथ ले जा सकते हैं, लाइव शोज और पिछले एपिसोड सुन सकते हैं 24/7। CJMR 1320 से जुड़े रहें, आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें और कभी भी चूके नहीं। CJMR 1320 की अधिकतम ऐप अब उपलब्ध है। ये गलत कीप गोइंग ओके। ऑन एयर, ऑनलाइन और अब फोन पर अब आप अधिकारित CJMR 1320 ऐप से अपने पसंदीदा स्टेशन को अपने साथ ले जा सकते हैं, लाइव शोज और पिछले एपिसोड सुने और 24/7 CJMR 1320 से जुड़े रहें। आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें और कभी भी चूके नहीं। CJMR 1320 की अधिकारित ऐप अब उपलब्ध है। अधिकारिक CJMR 1320 ऐप के साथ हमारे स्टेशन से जुड़े रहना इतना आसान कभी नहीं रहा। अब आपके पास CJMR 1320 लाइव स्ट्रीम, समाचार अपडेट और आपके पसंदीदा कार्यक्रम तक 24/7 पहुंच होगी। अपने समुदाय की आवाजों का आनंद लेने के लिए आज ही आधिकारिक CJMR 1320 ऐप डाउनलोड करें। हम समझते हैं कि रेडियो सुनना आपको पसंद है और हम ये भी समझते हैं कि आपकी दिनचर्या आपके हमेशा इसकी अनुमति नहीं देखती। चाहे आप दफ्तर में हो, यात्रा कर रहे हो या टहल रहे हो, आधिकारिक CJMR 1320 ऐप हर कदम पर आपके साथ रहेगा। CJMR लाइव स्ट्रीम तक 24/7 पहुंच के साथ आप लाइव सुन सकते हैं या पुराने शोज डाउनलोड करके ऑफलाइन सुन सकते हैं और एक क्षण भी नहीं चूक सकते। आज ही CJMR 1320 आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है।

0: Your home for community. CJMR 1320.
1: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है।
2: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो।
1: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार देख रहा हूँ।

क्या हमारे किस्मत ने ही इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है। जो प्यार जिंदगी दे सकता है, क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है।

चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे।

इस मुबारक मौके पे बेबाक है आरज़ू, बुलंद है हौसले, आवाज मिटा दे देश परदेश के सारे फासले।

होता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई